0: उदासी नहीं है आज की नारी, वो समानता की अधिकारी। लड़की ही हर वचन निभाए, श्रीमान जी वो युग बीता। राम मगर तुम बन के रहोगे, मैं भी रहूंगी बन के सीता।
1: स्वीकार
0: स्वीकार।

0: बनाकर रातों को देर से घर पे नहीं आओगे, पार्टियों में ले जाओगे, मेरे लिए वक्त बचाओगे,
1: हाँ हाँ,
0: शॉपिंग भी कराओगे,
1: हाँ, लेकिन तुम भी